एसएस आदि खुला खबर को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक कर गहना ग्यारेटी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिंग बजार सैंजा

0: कागज के में थी वा
1: झिलकाई
0: क्यों पर्सनल नंबर ब्लॉक लाई वी
1: पर्सनल मोबाइल नंबर मी उन्नी टेलीकमर बाई अफिस तरी आई ब्लॉक लाई खरखाई
0: अनि बैंगरी
1: बैंगरी चर चाह तली ललपर्दी
0: चम ललपर्दी न आफैन मोबाइल नंबर फेर दिया बदेर ब्लक तया विषय आफैन बैंक दिने जानकारी पिन परिम दे आफैन बैंक खाते न जानकारी अरू न योरी थोनी दक्या सचेत तल परिम
1: सतर्क तना ठगी तब दक्या जोगी न
2: सिद्धार्थ बैंक दक्या ले जनहितरी जारी संदेश
3: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदै भरिलाई
4: हतार हतार में छोरा को बिहे आटियो अरु सब व्यवस्था मिलियो तर अब सुन का गरगहना को व्यवस्था गर्नु पर्ने भयो कहाँ जाने के गर्ने अल्पत्र परियो
5: तिमी अल्पत्र नपर न मैले विश्वासिलो ठाउँमा बिहे
0: जानकारी पिन परिम दे आफै न बैंक खाते न जानकारी अरू न योरी थोनी दक्या सचेत तल परिम
1: सतर्क तना ठगी तब्द क्या जोगी न
2: सिद्धार्थ बैंक दक्याले जनहितरी जारी

मोड़ पेट्रोल पंप को गाड़ी प्रोप्राइटर रेशमीलाल कोईराला र विजय कोईराला संपर्क नंबर 0363-41-246 मोबाइल 98560-50119 र 98560-33-246

एसएस आदि खुला खबर को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक गरगहनाहरू ग्यारेन्टी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिंग बजार स्याङ्जा।

0: इंतजार करो और ना यो तो 7.5 MHz मेगा हर्ट्ज को रेडियो आदि खोले रसोई क्या हो।
1: नमस्कार म देवीराम पराजुली जिरे खोर्सानी को भोक लायो तपाईं यतिखेर सुन्दै हुनुहुन्छ आदि खोला एफएम 107.4।

जोगिंदर जय काल जोगिंदर तर राम जोगिंदर जय पानी ईमानदार प्रामिक जोगिंदर रे मैं।